0: तो हमने हमने 2020 स्टिल 2026 हमने डिफरेंट लीडर्स देखे, डिफरेंट पीएम्स देखे, डिफरेंट अपने सदर देखे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने खिदमत की, ठीक है, अपने समझे कि पूरी लाइफ दे दी पाकिस्तान को।
1: जी
0: और जब भी वो इक्तदार में आए तो बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की उन्होंने।
1: जी
0: तो अब बात करते हैं कि 26 में पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है, इकोनॉमी
1: जी
0: कंडीशन
1: टिल मतलब अभी तक कैसी चल रही,
0: अभी तक
1: क्या
0: कैसी चल
1: कुछ
0: रही है
1: कुछ बेहतरी आई, कुछ कमी आई क्या?
0: पाकिस्तान में। अगर अभी इस टाइम पे देखा जाए जरनाब, तो मेरे ख्याल में जो वर्स्ट डाउनफॉल अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी में आ सकता है तो वो अब चल रहा है। उसकी
1: जी
0: वजह ये है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, कॉटन इंडस्ट्रीज, जो पाकिस्तान का समझें एक तरह से बैकबोन समझा जाता था,
1: जी
0: वो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया।
1: जी
0: वो पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश चली गई,
1: जी और
0: ठीक
1: इंडिया
0: है,
1: शिफ्ट
0: इंडिया
1: हो गई,
0: शिफ्ट,
1: चाइना शिफ्ट हो गई।
0: मतलब पाकिस्तान के बाहर वो किस डिफरेंट कंट्रीज में, जहाँ पे उनको ये लगता था कि यार उनका फ्यूचर सेफ है वहाँ पे।
1: जी
0: क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पे अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही,
1: जी
0: हालांकि करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हो, सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो वही आपको बेनिफिशियल हो सकती है इन द फ्यूचर,
1: जी
0: अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो।
1: जी
0: उसके अलावा अगर देखा जाए जनाब के जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है
1: जी
0: वो भी इस टाइम पे मेरे ख्याल में बहुत बैकलेगिंग कर रहा है
1: पाकिस्तान का किसान आम जुबान में।
0: पाकिस्तान का किसान। क्योंकि आपको पता है कि यार ये समझा जाता है कि पाकिस्तान एक जो है ना एग्रीकल्चर कंट्री है,
1: जी
0: मतलब किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी आप जाते हो तो लोग यही कहते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में?
1: एहतशाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जैसे आप और मैं, हम दोनों हम एक ही इलाके से हैं,
0: यस
1: मतलब पंजाब से, और पंजाब तो जो है वो एग्रीकल्चर का गढ़ है।
0: गढ़ है
1: लेकिन जो चीज़ें अभी कुछ सालों में देखने को मिली हैं कि हमारे किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही, मतलब खाद कितनी महंगी हो गई है, डिफरेंट चीज़ें किसान के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें न्यूजीलैंड में, वही चीज़ें मतलब हर किसान के पास, नो डाउट के डिफरेंस है, मतलब पाकिस्तान में और न्यूजीलैंड में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें सब्सिडीज़ की बात करें या फैसिलिटीज़ की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की इवन बात कर लें आप, तो वो भी न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा है किसान के लिए, किसान के पास। और दूसरी चीज़ हम जैसे बात कर रहे थे, जैसे आपने अभी कहा टेक्सटाइल से रिलेटेड, मेरा
0: यस
1: बैकग्राउंड भी टेक्सटाइल
0: आपका
1: से है,
0: एक्सपीरियंस है बिल्कुल
1: तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल्स थी कुछ, जब पाकिस्तान बना और उसके बाद मतलब सारी चीज़ें डेवलप हुई आहिस्ता आहिस्ता, चलते चलते 1990s में जाके, इवन मैं अगर स्पेशली निटिंग की बात करूं, तो ये एक ऐसा बिजनेस समझा जाता था कि जिसको कहते थे कि अगर आप ये बिजनेस कर लेते हैं, निटिंग का बिजनेस, तो इससे अच्छा बिजनेस कहीं पे भी नहीं हो सकता। उस टाइम पे इतना अरूज था पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स का, और अगर हम उसको कंपेयर करें कुछ आने वाले सालों के साथ, तो फिर जैसे ही डाउनफॉल शुरू हुआ, जो निटिंग की या टेक्सटाइल्स की ओवरऑल अगर आप देखें कि जो इंडस्ट्रीज लगी थी वो इंडस्ट्रीज बंद होती गई, लोगों ने अपनी लूम्स बेच दी, और मतलब बहुत सारा क्राइसिस आया। इवन अभी कोविड के टाइम पे ये काम दोबारा जब स्टार्ट हुआ टेक्सटाइल्स पाकिस्तान की, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड मतलब एक चल रहा था, और बांग्लादेश में, इंडिया में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे थे, तो यहाँ पे पाकिस्तान की उस टाइम टेक्सटाइल्स बूस्ट कर गई। उसके अंदर ये हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत एक्सपोर्ट की, मतलब बेतहाशा एक्सपोर्ट की। मैं जहाँ पे काम कर रहा था, हमारी सिर्फ निटिंग की जो प्रोडक्शन थी वो 80 टन्स थी पर डे, और
0: ओके
1: वो एक साल मैंने वहाँ पे जॉब की पाकिस्तान में, और एक साल के बाद वो ही जो प्रोडक्शन थी हमारी 80 टन से लेके 180 टन तक चली गई। तो मतलब इतना ज़्यादा बूस्ट कर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, खुलनी शुरू हुई, मतलब थोड़े से क्राइसिस डेफिनेटली थे, अगर उनको ओवरकम किया जाता तो यही एक स्मूथ पैटर्न चलता रहता, लेकिन वो दोबारा फ्लॉप

0: हो गया, और इवन जो इंडस्ट्री यहाँ पे थी वो सारी चली गई बांग्लादेश और इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस बहुत ज़्यादा आए फिर, मतलब हम यही कह सकते हैं कि उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे, अगर वो बेहतर काम करें और उनको फैसिलिटीज़ दे जाएं, हमारे एग्रीकल्चर को और जो डिफरेंट शोबे हैं उनको अगर आप फैसिलिटेट करें, उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो डेफिनेटली हम हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो सकती है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं स्मॉल बिजनेसेस का। मतलब
1: जी
0: स्मॉल बिजनेसेस, ये वैसे तो हम टॉपिक कवर करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन वैसे जो ये अपॉर्चुनिटी है ये उन लोगों के लिए है जो, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जॉब्स में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं लोगों को पाकिस्तान में, कुछ लोग तंग हैं, कुछ लोगों की सैलरीज उतनी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मसले आने की वजह से मेरे ख्याल में लोगों को इस तरफ थोड़ा सा शऊर आना चाहिए कि आप अपना बिजनेस करें। होपफुली उसके अंदर जो है बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी, और
1: डेफिनेटली
0: डेफिनेटली
1: अगर आप
0: आपको
1: देखें ना जन्नाब के इस टाइम पे जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों को स्मॉल बिजनेसेस करने चाहिए,
0: जी
1: तो मेरे ख्याल में कि यार जॉब जो है ना वो आपको फिक्स टर्म तक आपको सेम चीज़ प्रोवाइड करती रहती है, लेकिन
0: जी
1: बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो अगर अगर आप भी आपको लॉस दे रही है तो कुछ पता नहीं है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको इतना प्रॉफिट दे दे कि आपको पिछले 2 महीने भी कवर हो जाएं।
0: जी और बिजनेस तो होता ही इसी तरह है, क्योंकि वो तो बिजनेस बिजनेस ही नहीं होता जिसमें लॉस ना हो,
1: लॉस ना हो,
0: क्योंकि
1: डेफिनेटली
0: लॉस और प्रॉफिट तो साथ साथ चलता रहता
1: चलता
0: है।
1: है।
0: उसके अलावा थोड़ा सा हम अगर कंपेयर करें यहाँ के बिजनेसेस को, और मतलब स्मॉल बिजनेसेस और लार्ज
1: लार्ज
0: बिजनेसेस
1: बिजनेस
0: को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। आप लार्ज बिजनेस जो है वो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, और स्मॉल बिजनेसेस, ये जो अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ यूथ के लिए है,
1: यस
0: तो क्या आप कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर क्या डिफरेंस, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कैसे आप इसको आगे लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा बताएं
1: जनाब
0: इसमें।
1: जैसे कि आप कह रहे हैं डिफरेंस डिफरेंस दोनों में जो मेरे ख्याल में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि यार जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चलते हैं।
0: जी
1: अगर आप प्लान कर रहे हो कि यार विद इन 1 ईयर आपको रिटर्न चाहिए, विद इन 2 ईयर आपको रिटर्न चाहिए, तो आप स्मॉल बिजनेस की तरफ जाओ।
0: जी
1: अगर आप ये चाहते हो कि यार आपने लंबा खेलना है, फॉर एग्जांपल आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स इवन के 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स एक फिक्स्ड आपको अमाउंट मिलती रहे, तो फिर आप जाते हो लॉन्ग टर्म या लार्ज बिजनेस की तरफ। क्योंकि स्मॉल बिजनेस तो आप अभी करोगे, आपको पता नहीं है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको
0: जी
1: जैसे पता चलता है यार मार्केट में ये ट्रेंड आया है, फॉर एग्जाम्पल शूज़ का ट्रेंड आया है, स्नीकर्स का ट्रेंड आया है, आप क्या करते हो, आप निटिंग वगैरह करते हो उसकी, ठीक है, आप बनाते हो उसको अच्छा सा, उसको सोल बनाते हो, सब कुछ बना के आप एक छोटा सा क्या करते हो कि अपना प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में एंटर कर देते हो, ठीक है। वो आपको आइडिया नहीं होता कि यार क्या होगा क्या नहीं। अच्छा विद इन 1 ईयर क्या होता है कि आपका बिजनेस बूस्ट कर जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको अच्छा रिटर्न आना शुरू हो जाता है।
0: जी
1: लेकिन आफ्टर 1 ईयर एंड बिफोर 2nd ईयर क्या होता है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब
0: जी
1: जो आपका वो प्रोडक्ट था वो आपको उस रिटर्न नहीं देगा,
0: जी जी
1: ठीक है, तो क्या होगा कि विद इन 2 ईयर आपका बिजनेस ठप हो जाएगा।
0: लेकिन मतलब ये है, बात करने का मकसद ये है कि जो लोग, जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो लोग नहीं कर सकते बड़ा बिजनेस, उनके लिए छोटा बिजनेस करना मेरे ख्याल में बेहतर है। उसकी वजह ये है कि अगर आप स्मॉल बिजनेस लेके चलते हो, नो डाउट उसमें ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं,
1: यस
0: सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये तो होता है कि आप जब मार्केट में होते हो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कि यार हाँ, यहाँ पे जाके
1: वो
0: ट्रेंड चेंज होगा
1: जनाब आपने
0: तो
1: देखा
0: मुझे भी
1: होगा,
0: थोड़ा सा चेंज करना पड़ना है अपना।
1: हाँ वो मैं वही बात करने लगा हूँ कि जनाब आपने ज़्यादातर देखा होगा कि यार लोग शुरू करते हैं अपना स्मॉल बिजनेस, लेकिन देख जैसे ही देखते हैं कि यार नहीं यार मुझे तो यार 1 साल मैंने काम किया मुझे रिटर्न कोई नहीं आ रहा, बंद कर देते हैं कि यार नहीं मैं नहीं चल
0: जी
1: सकता, मेरे मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा काम नहीं है।
0: जी
1: लेकिन असल में वजह क्या होती है कि जो वो चेंज आता है मार्केट में, इकोनॉमी में चेंज आता है, ट्रेंड्स में चेंज आता है, फैशन में चेंज आता है, उसको वो अडॉप्ट नहीं करते,
0: जी
1: जिसकी वजह से बैक लैगिंग हो जाती है और वो अपने आप के ऊपर ये चीज़ नहीं देखते। वो देखते हैं कि यार नहीं आगे लोग इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे।
0: जी
1: लेकिन अगर आप देखें कि बड़े बिजनेसेस को, बड़े बिजनेस क्या कहते

0: क्या करती है कि वो उनके सेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट किसी भी प्रोडक्ट का, वो एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट 3-4 सेगमेंट्स बना के उसी को चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं चलाते हैं। अब मार्केट में पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल लोग देखेंगे कि यार ये पड़ा ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यार लोग यूज़ कर रहे होंगे
1: जी,
0: तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत हो जाती है, वो फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब एक दफ़ा वो यूज़ कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी तो 3 साल पीछे वो पड़ा ही हुआ था मार्केट में, लेकिन वो जब यूज़ करना शुरू करते हैं तो कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो लार्ज बिजनेसेस इस तरह करते हैं फिर।
1: जी, तो इसके साथ एहतशाम अभी हम एक ब्रेक पे चलेंगे, तो ब्रेक
0: यस
1: से वापस आते हैं तो फिर हम थोड़ा सा
0: डिस्कस
1: डिस्कस
0: करते
1: कर
0: हैं
1: लेंगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड है। तो

0: शाम बनेगी।
1: लिखूँगा रात के उभरने पे, या लिखूँ उस चांदनी के मरने पे, या लिखूँ तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूँ के शर्मा के झुकने पे, या लिखूँ उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं। सफर में ही तो सारे मन